0: आया।
1: तो मतलब ये हुआ
2: कि आशिक हो तो, कि आशिक हो तो ऐसा हो, कि आशिक हो तो ऐसा हो, कि आशिक

ना कहो, दूर से प्यार करे उसको आशिक ना कहो, गम में चुपचाप मरे उसको आशिक ना कहो, जो जमाने से डरे उसको आशिक ना।

0: आशिक हो तो।
1: अरे जा कि दिल भर हो तो।
0: आ आ आ के आशिक हो तो ऐसा हो,
2: के दिल भर हो तो ऐसी हो।
0: जैसे मजनू जैसे फरहार जैसे महिवाल रांझे है, जैसा आशिक हो तो ऐसा हो। हाँ।

बनिया बिन बरखा पलखाए, पिछली बादल बदली बहके बुलबुल बिरहा गाए, पुए पुए बिरहा गाए, खोका खोका भाई जी खोका खोका। सुन सुन के संगीत सफेदा सांप सुने सरसाए, सांप सुने सरसाए, साए साए सुरमा सा संग समाए।

देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरी रुत न चली जाए।

आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

के सर पे चांद दिखेगा यानी होगा टकला। बच्चा जैसा भोला होगा तेरा दिल भर जानी, थोड़ी उसकी नाक बहेगी थोड़ा मुख से पानी। एक निकम्मा नाकारा लिखा है भाग में तेरे, एक निकम्मा नाकारा लिखा है भाग में तेरे।

आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,